रंग लाएंगी कब मेरी आहें, फिर मदीने की जानिब को जाए। सारे आलम में फिर फिर के या रब तेरा दर्द मोहब्बत सुनाए। या अल्लाह मेक यूज ऑफ अस दैट वी गो ट्रैवल इन द वर्ल्ड एंड वी लाइट अप द हार्ट्स ऑफ द पीपल विद योर मोहब्बत एंड योर लव एंड द लव ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

अब गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं तेरे गुलिस्तान में, सब गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूँ। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत

याद में तेरी सबको बुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको बुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लौटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे।

अपना बना ले, अपना बना ले ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। अपना बना ले, अपना बना ले ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। नफ्स के शर से मुझको बचा ले ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। पंजे गम से मुझको छुड़ा ले ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह।